नमस्कार, सुप्रभात। FM 96.7 मेगाहर्ट्स पर विविध भारतीनी विज्ञापन प्रसारण सेवानुं आ अमदावाद केन्द्र है।

0: આપણે ટ્યુન કર્યું છે વિવિધ ભારતીની વિજ્ઞાપન પ્રસારણ સેવાનું અમદાવાદ કેન્દ્ર. સવારના 6 થવા આવી રહ્યા છે અને થોડી ક્ષણોમાં આપ સાંભળશો અમારા દિલ્હી કેન્દ્રથી હિન્દીમાં સમાચાર.
1: સમાચાર કે સાથ મેં મુકેશ કુમાર બલ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है. वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है. दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है. इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है. इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी. सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है. आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है. यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है. इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है.
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है. अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है. 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था. भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका.

है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गोपियां मेरी आज लड़ाई, ओ करवाना चाहे

0: मतलब ये जो है धिन धिन, ये
1: जी
0: इतना जो अवग्रह है दो मात्रा के बीच में,
1: जी
0: तो उससे वो ताल विलंबित हुआ। विलंबित होने का फायदा ये है कि ख्याल गायन में गायक जो है उसको बड़ा फासला मिल गया गाने के लिए,
1: जी
0: तो अपनी प्रस्तुति वो बड़े आराम से फिर दे सकता है। अगर इसमें जो है ना सम और काल का ये चक्र है, ताल मतलब तो सम काल का चक्र है,
1: जी जी
0: तो सम की तो अपनी अपनी अहमियत है। सम पर आने के लिए ही सारी जो प्रस्तुति होती है वो उसके लिए ही तड़पती रहती है, ये मुझे सम पर आना है।
1: जी जी
0: तो सम पर अगर आना है तो उसके लिए हमें गाने के लिए फासला मिल गया और उसके बाद में हम सम पे आए, तो श्रोताओं को तभी आनंद मिलता है जब वो सम पे सब लोग आकर मिलते हैं एक
1: जी
0: साथ। तो ये जो है ये एक ताल वाला गणित है। तो ऐसे ही सारे ताल है, जप ताल है, रूपक है, तीन ताल है। इसमें विलंबित में ख्याल गायन होता है और मध्य लय में जो है उसमें फिर छोटे ख्याल होते हैं,
1: जी
0: और मध्य लय में ही हमारे फिल्मी गीत जो है वो उसमें उनका आविष्कार हुआ है। तो ये मतलब अलग इसलिए है क्योंकि 12 मात्रा के ताल में गीत को ढालना और उसकी खूबसूरती रखना,
1: जी
0: तो ये एक तरह से चैलेंज होता है। और वो चैलेंज जो है वो संगीतकारों की उनकी प्रतिभा है कि उन्होंने उसको बाखूबी लोगों में प्रस्तुत किया है।
1: जी तो एक ताल की खूबसूरती जिस गीत में
0: जी
1: देखने को मिलती है,
0: जी वो
1: वो कौन सा गाना आपको याद आ रहा है?
0: केतकी की गुलाब जूही,
1: चंपक बन झूले,
0: जी
1: बसंत
0: पंडित
1: बहार फिल्म का गाना है
0: भीमसेन जोशी जी, पंडित जी उनकी।
1: और मन्ना दा का स्वर भी इस गीत में है और शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बात करेंगे।

0: एक ताल में निबद्ध बसंत बहार फिल्म का गीत आपने सुना श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे के स्वरों में, संगीतकार शंकर जयकिशन। रविंद्र जी, प्रतिभाशाली संगीतकारों ने जैसे एक ताल का बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया है फिल्मी गीतों में,
1: जी
0: उसी प्रकार झपताल का भी प्रयोग हुआ है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: आपकी राय क्या है?
1: दस मात्रा का झपताल जो है
0: जी,
1: मतलब दस मात्रा में किसी गीत को ढालना, तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है। और वो चुनौती इसलिए है क्योंकि ताल जो है उसमें सम है, काल है
0: जी।
1: मतलब झपताल जो है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी
0: जी।
1: अभी ये जो है ये इतना बड़ा आवर्तन है दस मात्रा का, उसमें पहले धी पर सम है
0: जी,
1: फिर काल है, उसके बाद में फिर सम है। तो ये जो सम काल का गणित होता है इसको रखते हुए वो गीत बनाना, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो मशहूर गीत।
0: हाँ,
1: इसलिए भी इस चीज़ को मानते हैं। इतना प्रतिभा संपन्न हमारा ये संगीतकारों का दौर रहा है फिल्मों
0: जी,
1: में
0: जी, जी,
1: कि उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत बनाए, और जो भी बने हैं सब लाजवाब है।
0: बेशक। झपताल में निबद्ध कोई गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए?
1: वैसे तो कई सारे गीत हैं
0: जी।
1: आवाज देके हमें तुम बुलाओ,
0: प्रोफेसर फिल्म का गीत है
1: जी,
0: जो राग शिवरंजनी में आधारित है
1: जी।
0: तो श्रोताओं सुनते हैं शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

0: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की छठी कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: જનગણનાના પ્રથમ ચરણમાં ઘર યાદી અને મકાનોની ગણતરી એટલે કે તમારા મકાનની ગણતરી થશે. ચાલો તમારી ભાગીદારીથી તેને સફળ બનાવીએ અને વિકસિત ભારત 2047 તરફ એક વધુ ડગલું ભરીએ.
1: राजेश का प्यार भरा नमस्कार. श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी का जन्मदिवस है, इसलिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे कुछ चुनिंदा गीत. प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और चित्रगुप्त के संगीतबद्ध किए गाने के साथ. लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं. फिल्म का नाम भाभी

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में आज़ाद फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
3: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
3: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है।

0: शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। और आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नया आदमी इस फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत विश्वनाथ एम मूर्ति का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में नया आदमी फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे विश्वनाथ एम मूर्ति। इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में ही संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आगे दीजिए। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में संजोग फिल्म का गाना। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

लीजिए, अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद्ध किया गाना। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम।

और इसके साथ ही कार्यक्रम हम है राही प्यार के यहीं पर संपन्न होता है। आप ट्यून करें जय 96.7 FM विविध भारती ने विज्ञापन प्रसारण सेवानु अमदावाद केंद्र। बराबर 7 वगैरह 45 मिनिटे सांभ शो गुजराती में समाचार।

0: के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले

0: FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को

0: लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे

0: एफआईआर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों आइए विचार करें कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाए।

पर नहीं। दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं कैलाश खेर, नकश अजीज और अल्तमश अजीज की आवाज़ों में हाउसफुल 3 फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं फरहाद साजिद अरफात महबूब और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं हर्ष सक्सेना और भूमि त्रिवेदी की आवाज़ों में सब कुशल मंगल फिल्म का गाना। समीर अनजान हैं गीतकार और संगीतकार हैं हर्षित सक्सेना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए कैलाश खेर और मीत ब्रदर्स अंजन की आवाज़ों में कुमार का लिखा हुआ, मीत ब्रदर्स अंजन का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है क्या सुपर कूल हैं हम।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए मोहित चौहान और उस्मान मीर की आवाज़ों में दुकान फिल्म का गाना। सिद्धार्थ गरिमा हैं गीतकार और संगीतकार हैं श्रेयस पुराणिक।

0: अभी आप सुन रहे थे दुकान फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुपर 30 फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आप सुन रहे थे नकश अजीज और मधुबंती बागची की आवाजों में लवयापा फिल्म का गाना। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए दिल धड़कने दो इस फिल्म का गाना। आवाज है सुनिधि चौहान की, लिखा है इसे जावेद अख्तर ने और संगीत संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

0: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए विशाल मिश्रा, नेहा भाषिन और इरशाद कामिल की आवाज़ों में बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस फिल्म का गाना इरशाद कामिल हैं, गीतकार और संगीतकार हैं विशाल मिश्रा।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाज़ों में अमजद नदीम थे गीतकार और संगीतकार भी। लीजिए अब सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में कौसिर मुनीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं साजिद वाजिद और फिल्म का नाम है दावत-ए-इश्क़।

0: इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आगे दीजिए। नमस्कार।
1: आकाशवाणी छे आकाशवाणी उजवी रही छे तेनी प्रसारण यात्रा ना गौरवमय 90 वर्ष।

0: पेढ़ियों बदलाए, समय बदलायो, पर हमेशा आपनी साथे रही आकाशवाणी। आकाशवाणी 90 वर्षे पण एटली ज ताजगीनो अनुभव करावती आपनी आकाशवाणी 90 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, श्रोताओना हृदय में पोतानी प्रसारण यात्राना सफल 90 वर्ष पूर्ण करशे आकाशवाणी। तारीख 8 जून 1936 थी सतत आपनी सेवामां आकाशवाणी। आकाशवाणी एक मेघनो 90 वर्षनो साथ, एक अकबंध अतूट विश्वास, एटले आकाशवाणी।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत, 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपनी कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाली इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रहीं फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे। चुप चुप।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

मैं सारे काम काज करूं, तेरे हुस्न के ईगो का मसाज करूं, तेरा झूम का जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके एफआईआर में लॉज करूं, जानती है।

0: एक खुला मा प्लास्टिक क्यारे न फेंको, प्लास्टिक ने बदले कापड़ नी थैली, स्टील नी बॉटल वगैरह नो उपयोग करो।
1: आवो आ प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव मा सहभागी बनी स्वच्छ अने प्लास्टिक मुक्त गुजरात बनावीए। गुजरात वासियों, आपनी प्रकृति अने पर्यावरण ने प्लास्टिक मुक्त बनावानो समय आवी गयो छे। गुजरात सरकार द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस थी शुरू थई रही छे विशेष प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। घरे प्लास्टिक नो कचरो अलग थी एकत्र करो अने डोर टू डोर कलेक्शन वैन मां ज आपो।
0: याद राखो, जाहिर जग्याए, नदी नाळा के खुल्ला मां प्लास्टिक क्यारे न फेंको, प्लास्टिक ने बदले कापड़ नी थैली, स्टील नी बॉटल वगैरह नो उपयोग करो।
1: आवो आ प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव मां सहभागी बनी स्वच्छ अने प्लास्टिक मुक्त गुजरात बनावीए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां प्रसार।
2: आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं।

सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हम आपको राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत रचना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है अमरदीप।

0: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे।
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
0: बस एवो जो कचरा नो छे भीनो कचरो सूको कचरो सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई अने इटलेज आ चार रंग याद राख जे। लीलो डब्बो भीना कचरा माटे वादड़ी सूका कचरा माटे लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे काळो रंग छे ने एकदम सिंपल।
2: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
3: पापा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
2: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
0: पण हवे वारो अपना शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
2: एटले
0: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे अने एटले आपणे आपणा

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन की संगीत निर्देशन में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण तो है ही, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मन मौजी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजें फिल्म शहनाई के लिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शारदा से आपके लिए चुना है। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, राजेंद्र कृष्ण के बोल तुम्हें ही और सी रामचंद्र का संगीत है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम का इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी टिप्पणियां आपके संदेश पढ़कर हमें पता लगा कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि क्या बात है, आज सुरीला सफ़र में हम सफ़र करेंगे कि नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कार्यक्रम आपका अपना है और हम हर दिन आपके साथ यूं कहें कि आप हमारे साथ सफ़र करते रहेंगे। हाँ थोड़ा कभी कभी आगे कभी कभी पीछे हम हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। तभी तो जब ऐसा होता है यानी कभी समय ज़्यादा हो जाता है कभी समय से पहले कुछ हो जाता है तो हमारा ये मन व्यथित हो जाता है और आज इसीलिए हमने कुछ ऐसे गीत चुने हैं जो आपके मन को प्रभावित ज़रूर करेंगे। और हमने हमारी इबारत बहुत छोटी रखी, कई श्रोताओं ने लिखा है कि अरे इतनी छोटी इबारत, जब हम बहुत बड़ी इबारत रखते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी इबारत रखी है, तो ऐसा नहीं है। जब मन में जो विचार आते हैं जिस गीत को लेकर या आज इस कार्यक्रम को लेकर, हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे अच्छा तो आप लिख देते हैं जनाब, जिसे हम पढ़ते हैं आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज हमारी छोटी सी इबारत है कि कभी कभी मन का रेगिस्तान सूख जाता है, या यूं कहें कि कभी कभी मन जो है रेगिस्तान सा हो जाता है, मन प्यासा हो जाता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई, आप हम, किसी न किसी चीज़ का प्यासा है ना। उदास मन को बस एक अदृश्य मीठी सी बूंद की तलाश होती है। अगर आज यूं कहें कि आपका मन जब भी उदास हो तो रुकिए, खुद को कोसिए मत, कोसना बंद कीजिए, आसमान की ओर देखिए, सूरज खुद जलकर औरों को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, बस यही जीवन दर्शन है। इसलिए इस जीवन दर्शन को लेकर आज हमने इबारत रची, तो छोटी सी इबारत थी क्योंकि जब दर्शन की बात हो गई तो क्या कहना चाहिए, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात है ना। तो आपने मन के बारे में, सूरज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ हमने आपको लिखा था कि इस इबारत में आज के चुनिंदा गीतों से संबंधित कोई शब्द नहीं रखे गए हैं, जिसे लेकर आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भाई इस शब्द पर तो बहुत सारे गीत हैं। आज हमने आपको इतना बड़ा क्लू दे दिया और उसको जानकर आपने देखिए कितने कम समय में कितने सारे गीत चुन लिए हैं जो हमारी पसंद के गीतों से मेल खा रहे हैं, यानी यूं कहें कि अब हमारी पसंद मिलने लगी है। यही तो होता है संगत का असर, हमें आपकी संगत का असर हो गया है, या यूं कहें कि आपको हमारे साथ रहने का असर है कि हमारी पसंद मिलने लग गई है। तो बस आज के गीतों में रे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बताइए कौन से गीत हो सकते हैं वो। आपने बहुत सारे गीतों को बताया भी है और उसका जिक्र हम करने भी वाले हैं, लेकिन हाँ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फिल्मी गानों में हमारे गीतकारों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग बहुत सफल भी हुए हैं। आज के सभी गीतों में रे का संबोधन है ना। कहते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक तरीका है ये, जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु, विचार या खुद के मन को सीधे पुकारते हैं तो उसमें संवाद करते हैं और कहते हैं सुन रे, है ना। बस इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है जहां गीतकारों ने उसमें खुद से, किसी वस्तु से, किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है रे के माध्यम से, जैसे कि सूरज रे जलते रहना। तो सुनिए आज का ये पहला गीत।

जी, तो देखा आपने, सूरज रे जलते रहना, कितना खूबसूरत गीत। हेमंत कुमार की आवाज थी, हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का नाम था, कवि प्रदीप की रचना थी ये, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आपने सुना इस गीत को और महसूस किया होगा कि यहाँ कवि प्रदीप प्रकृति के सबसे तेजस्वी तत्व सूरज से बात कर रहे हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। सूरज रे जलते रहना, बुझना मत जलते रहना, कितना खूबसूरत तरीके से गीतकार ने इस गीत को लिखा है ना। हमारी श्रोता लिखती है कि कोई चीज़ खो जाए और ना मिले तो मन कैसा उदास हो जाता है, मन का रेगिस्तान उसी पल सूख जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान नियति के आगे झुककर जीने को बाध्य है, और जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों नहीं जीवन थोड़ा हंस कर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी। इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है, उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, मन मेरा है, लेकिन मन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे

अस्तित्व में आया मन को ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के चार अंगों में से मन एक है, शेष तीन बुद्धि, चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है, संकल्प विकल्प, चंचलता, दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है, बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर देखे। उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहाँ उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है, खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, शब्द रे। सोना रे,

आशा भोसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। कितनी प्यारी इल्तजा कर रही है महबूबा अपने महबूब से, ओ मेरे सोनारे। जी तो आज के दो सवाल नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे गीत लिखे हैं जो हमारी गीतों से मेल भी खा रहे हैं और उसके अलावा भी गीत लिखे गए हैं, तो वही हमारा सवाल है कि रे का ये प्रयोग किन किन गीतों में हुआ है, आप बताइए। जैसे ही आप बताएंगे हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से और मिल खा जाए और इसके अलावा कुछ अन्य गीत भी हमारी नज़र में आ जाएं। तो रे का प्रयोग यहाँ और फिल्मों में किन किन गीतों में किया गया है इसका उल्लेख आपको करना है, कम से कम चार या पांच गीत। और दूसरा सवाल ये है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गीतकार जब लिखता है जैसे सोना रे सूरज रे, ये क्यों और कब। जैसा कि मैंने पहले कहा भी था, आप अपनी कल्पना से बताइए, अपनी भावना से बताइए कि रे का ये काव्यात्मक रूप गीतकार कब कब गीतों में किस रूप में इस्तेमाल करता है। अगर वो कहता है सूरज रे चंदा रे मन रे, तो क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा कम से कम शब्दों में।

0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आधुनिक अंधी दौड़ की मरीचिका का उल्लेख करते हुए जीवन के दर्शन को बयां कर रही है।
1: आप छो विविध भारती ना अहमदाबाद केंद्र साथे माणी रहा छो मुंबई केंद्र पर थी प्रसारित कार्यक्रम सुरीला सफर। बराबर 1:20 हवे समय थशे गुजराती समाचार नो, तो सांभळशो गुजराती समाचार बराबर 1:20।

0: જનગણનાના પ્રથમ ચરણમાં ઘર યાદી અને મકાનોની ગણતરી એટલે કે તમારા મકાનની ગણતરી થશે. ચાલો તમારી ભાગીદારીથી તેને સફળ બનાવીએ અને વિકસિત ભારત 2047 તરફ એક વધુ ડગલું ભરીએ.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है.
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.

0: कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: तभी तो उन्होंने कहा, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख रखे हैं, और मुझे लगता है बहुत गहराई में चले गए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं उलझ गए हैं हम मंदाकिनी जी शब्द जाल में। जब आप होती हैं तो कुछ नया होता है, 1 बजे का बस इंतज़ार है, हम नहीं उलझेंगे। बिल्कुल मत उलझिए, बस आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से सफ़र में रहिए और आरामदेह सफ़र का मज़ा लीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मन इतना सूख जाता है कि आँखों में आंसू होते हुए भी प्यास नहीं बुझती। भीड़ के शोर में चलते चलते अपनी ही आवाज़ कहीं खो जाती है। हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है, पर भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है। कोई रोटी का प्यासा है, कोई मोहब्बत का, कोई बस एक अपने का। मन ढूंढता है एक मीठी सी बूंद जो माथे पर हाथ रखकर कह दे, मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मगर अक्सर शाम ढल जाती है और वो बूंद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। फिर नज़र उठती है आसमान की ओर, जहाँ सूरज रोज जलता है, अपने हिस्से की आग सहकर दुनिया को उजाला देता है। तब दिल रो पड़ता है कि शायद जीवन का अर्थ यही है, अपने दर्द को सीने में रखकर भी किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सबसे ज़्यादा रोशनी बांटते हैं जो अक्सर उनकी तन्हाइयों का हाल कोई नहीं पूछता। क्या बात कह दी आपने, मेरी आंखें नम हो गई हैं, गला रुंध गया है। सचमुच यही होता है कि जो दूसरों की चिंता और फिक्र करता है उसके लिए आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो आपने कह दिया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की पोस्ट 12 बजे के बाद आई है। रोज की तरह हम तो पोस्ट का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पोस्ट 10 बजे के करीब आ जाती है, आज बहुत देर कर दी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर के अंदर दर्द भरे उदासी के सॉन्ग शायद सुनने को मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, आज हम कुछ दर्शन पर बात कर रहे हैं, जिंदगी का दर्शन, जिसे आप भी पसंद करते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं है बल्कि अनंत ऊर्जा, प्रकाश, जीवन और त्याग का सकारात्मक प्रतीक है। सूर्य निरंतर गतिमान और कर्मशील है, इसे आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ये निराशा के काले बादलों को चीर कर रोशनी और प्रकाश रूपी किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। जी बिल्कुल, आशा का संचार तो आपने भी कर दिया है, इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं, और क्या चाहिए। आपका ये जो है ना, मैं हूं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ हैं तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहना है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, हम पढ़ेंगे जल्द ही। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है। जैसे मैंने कहा, श्रोता रे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। जी एल रावल के बोल थे और सोनिक ओमी का संगीत। कितना गहरा और दर्द भरा गीत था। जब हम किसी को पुकारते हैं और कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रे आ जा रे आ जा रे, है ना। बस यही है रे का प्रयोग, जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि रे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किंतु मन का रेगिस्तान प्यासा हो यह तो संभव है। लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई। जहाँ सूखा होता है वहाँ भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं, अभी तो हर जीव ही एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन अब भी ये तो कहावत प्रचलित है कि जहां कोई नहीं वहां रेड़ का ही पेड़ प्रधान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं। एक बूंद मिल जाए, प्यार की एक बूंद, पानी की एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफ़र में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है लेकिन आपकी प्यार की बूंद, या यूँ कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है वो बूंद काफ़ी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए? सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो ताही, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाई। अच्छा, कल आप सुन रही थी? बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहाँ कहाँ से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफ़ी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो दिलचस्प पहेली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तुका है न पिए, धीर धरे ओ रे पिया, रे कबीरा।

नैना रे, सजन रे, चलत मुसाफिर मोहलिया रे, क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने ही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल, आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तो खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा।

भी है, प्यास भी है और ये शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था क्योंकि रोजाना सुहाना सफर की सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहाँ रेडियो बजता रहता है, एफएम रेडियो बजता रहता है और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

मिल गई है आजा रे प्यार पुकारे, ये अगला गीत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था। दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे क्या बात है, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखीरी सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीर धीरे, ये गाना आपकी लिस्ट में है। बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि वह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है जहाँ आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आप बैठेंगे बात करेंगे। बिल्कुल, आपने ए हरिहरन की आवाज़ में ये गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे दिल से रे। बिल्कुल सही, आपका चुनाव भी बहुत सही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना चंदा रे मेरी मोरी पतियां ले जा, वाह जा रे जा बालम वाह, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है, बहुत नया गाना आपने चुना है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई री चंदा रे आओ रे ओ रे पिया, ये गाने नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे, वाह क्या बात है, कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, रे मन सुर में गा ओ रे ताल मिले नदी के जल में, यह तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया। पिया तो से नैना लागे रे, क्या बात है, रे माँ तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं, और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है, मंदाकिनी जी आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है। गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में, शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज़ लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की रात। साथी रे सुनिए आप। साथी रे ये रे हमारी जान ले लेता है ना,

0: જનગણનાના પ્રથમ ચરણમાં ઘર યાદી અને મકાનોની ગણતરી એટલે કે તમારા મકાનની ગણતરી થશે. ચાલો તમારી ભાગીદારીથી તેને સફળ બનાવીએ અને વિકસિત ભારત 2047 તરફ એક વધુ ડગલું ભરીએ.
1: एक अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से, गीतकारों के माध्यम से. क्या बात है, बहुत सुंदर. वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेघारे मेघारे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए. हाँ, आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आएँ. तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है. बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है, सूरज है, चांद है, को व्यक्ति के रूप में, अपने खास प्रेमी के रूप में, महबूब के रूप में, अपनेपन के रूप में देखता है, तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है, ताकि वो जो बात, वो जो प्रार्थना, वो जो इल्तजा, वो जो प्रेम की बौछार, वो जो भी संदेश देना चाहता है, वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक, उस इंसान तक पहुंच जाता है. जैसे सूरज रे जलते रहना है ना, रे का प्रयोग. तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया. और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ, जसपाल सिंह की आवाज़, फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम.

0: मन से मन का बंधन सच्चा, बाकी बंधन झूठे, कभी अपना साथ न छूटे।
1: जी हाँ, कभी अपना साथ न छूटे। प्यारे श्रोताओं रे, बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यहीं थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

दोस्तों आइए विचार करें कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह

दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

0: જનગણનાના પ્રથમ ચરણમાં ઘર યાદી અને મકાનોની ગણતરી એટલે કે તમારા મકાનની ગણતરી થશે. ચાલો તમારી ભાગીદારીથી તેને સફળ બનાવીએ અને વિકસિત ભારત 2047 તરફ એક વધુ ડગલું ભરીએ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की. रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे. CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई. पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत. केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी. श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने. वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की. जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया. सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया. प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है. श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है.

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और

0: नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष JP नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में

कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन।

खारवन, मीनाक्षी, प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने, और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से। रामसखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज़ सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज़ सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
2: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
1: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूखा कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे काळो रंग छे ने। एकदम सिंपल,
3: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी माज कचरो आपो।
4: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मा फर्स्ट आवी।
3: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
1: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
3: एटले?
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मा सफाई नू अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मा ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
3: आपनु शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मा जारी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो!
2: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा।
2: खुदा के लिए
1: कोई रहम नहीं, नाचो!
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता कि ये आज लाल के लिए किस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूं। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं नाचो।
2: नहीं।
1: गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा, मंजूर अली।
1: जी आलमपना।
0: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब के चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
1: आलमपना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साये में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियाया तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
0: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमी बोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
1: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
0: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात व ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
1: जी हाँ आलम परवर, आपकी बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्त फाश देनी चाहिए।
0: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
1: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
0: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
1: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
0: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर।
1: जी आलम पना।
0: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
1: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
0: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
1: जो हुक्म आली जा।
2: तस्लीम।
0: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
2: मेरा नाम एमिली है योर मैजेस्टी।
0: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम? योर
2: जी योर मैजेस्टी।
0: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
2: आलम पनाह। आलम पनाह।
0: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
2: जी जी हाँ, जान पाना हा। यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
0: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
2: ओह, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल हैं, हम यहाँ आपकी पनाह में रहने चाहता है।
0: ठीक है एमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
2: ओह थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा, बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
2: ओह नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते, हम तो आजाद घूमने चाहते, हमारे कोई पर्दा नहीं करता।
0: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो।

0: जब तक चाहो रह सकती हो।
1: ओ जयपाना, आप कितनी अच्छा है, कितना खूबसूरत है आप।
0: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
1: ओ शुक्रिया आलिम्पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
0: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
2: जी हाँ जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब के नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
0: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
2: जी हाँ आलमपना, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
0: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं, लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो है ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
2: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
0: नवाब
2: जहांपनाह,
0: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
2: जी हां आली मकाम, इसमें कोई
0: चंद गद्दार मुरझाई पखड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
2: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपे।
0: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
2: जी अली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
0: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
2: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
0: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
2: बेशक आलमपना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन बदसात अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
0: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
2: अली कद्र,

0: अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ?
0: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
1: और अब क्या हुआ उसको?
0: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली हैं। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
0: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
1: ओह, ये तो बहुत संगीन मामला।

0: औरतों को काफी आजादी है।
1: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
0: ये तो बहुत संगीन मामला है।
1: जी हाँ अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
0: इस वक्त वो कहां है?
1: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
0: नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
1: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
0: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
1: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
0: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
1: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
0: कौन? सकीना बेगम? यहां? फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
0: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ? हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
0: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
0: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलम पना।
0: वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
0: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
1: जहां पना ने याद फरमाया।
0: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस हराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ बराबर के खेमे में है वो बदसात।
1: जी आलीजा, हुक्म की तामील होगी।
0: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलम पना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहाँ हुजूर का कयाम हो वहाँ मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
0: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलम पना की मर्जी।
1: आलम पना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाह के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्त मेजर मुनरो को भेज चुकी है। घोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर।
0: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो। शुजा, ये हाँ। ये क्या है?
1: जहां पना, ये तो अंग्रेजों की तोपें हैं। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
0: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
1: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने

0: कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
1: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खां, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जय पना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी के गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेज रियाया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन, शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 मेरा मतलब है 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है।

0: मंजूर है, तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
1: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
0: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलम पना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहनशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहाँ पहुँचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुँचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहनशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना, ये मौजा धनौली है। यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे, ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर, जरा पता लगाओ।
0: आलम पना, ये आली जा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमें हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलम पना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।

0: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें बराई।
1: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
0: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
1: जी, वो नजीबाबाद है।
0: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

0: गुलाब की पंखुड़ियाँ। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: बेटा, दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
2: अरे मम्मी, आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
1: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई। अने इटलेज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूखा कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे काळो रंग छे ने। एकदम सिंपल।
3: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नो वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
4: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
3: वाह, एकदम फर्स्ट क्लास।
1: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
3: एटले?
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नू अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
3: आपनू शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मजारी।
5: डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस, टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
6: सोया था नस नस में, अब ये जग गया, ए, लहू मुलग गया।
5: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?
2: मैं जिंदगी

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो ज़रूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो ज़रूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: जी, तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से।
0: हाँ।
1: जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता।
0: हाँ।
1: और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन, जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: था नहीं, था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीज़ें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत ज़बरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे, या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नज़र से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेंस आए, अभी टेरेंस गए, नाचेंगे तो नहीं, लेकिन

0: गाना तो सुना सकते हैं।
1: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टीजर्स हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टीजर्स हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरनमेंट में पला पड़ा। बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके। आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
0: अरे इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए, नहीं गाना तो बताइए।
1: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
0: बोनियम का,
1: हाँ,
0: ओके,
1: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
0: सौतन।
1: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे फिर अजीब दास्तां है, अजीब दास। मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात तक कि वो लफ्ज़ जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
0: याद भी हो जाते थे,
1: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यारा लगता है। तब मेरी आवाज एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ
0: तो...
1: भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है। सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था तो, और रिजल्ट भी लेकर आता था। पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से फिर मेरे और बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन इस कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर तो इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया। वो एक तुक्का ना एक लॉटरी

0: एलए ही लग गई, तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप, तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाता है।
0: हाँ, तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं, वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों को, लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, लिए अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी, उनको डांस सीखना था तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज़्यादा मैंने बहुत कुछ पाया तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: होगी? 17 साल की थी।
0: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया था।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उनके, आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे यार, सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली। क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैं साइंस, मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3

0: मार्क्स की वजह से मुझे में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहाँ से छुड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज़ के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने हैं।
1: ओह,
0: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूँ तो मैं शायद सफल हो जाऊँगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तो इतना पढ़ा लिखा है, तो इतना होशियार बच्चा था, तो डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तुम माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया है, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ, तो उन्होंने सब ने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी।
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
0: करेक्ट।
1: वो हर चीज से डरता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए,
0: हाँ,
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा होगा।
0: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। हाँ। लेकिन मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए वो
1: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए।
0: खुश हो
1: तो खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के? तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गई, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर? तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पर जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पर आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: लेकिन एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
0: नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जब जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में। फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, हाँ। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते, हाँ, थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त, हाँ, पूछी जाए,
1: हाँ,
0: तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: हाँ, लोकल ट्रेन
1: और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है,
0: हाँ,
1: तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे,
0: हाँ, हाँ,
1: तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: दरवाजे पे लटक जाऊं।
1: आई एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों, ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं, ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, हाँ, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते
1: हैं। नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास से नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हंसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने

गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे. लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभा ता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा. ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है.

0: ये गीत तो हमने सुन लिया, जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से,
1: अगर
0: बिल्कुल
1: आपने,
0: अपने आप को बचा के रखना
1: हाँ
0: चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मज़ा है और जो जिज्ञासा में मज़ा है, लाइफ को खोजने में मज़ा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में
1: हाँ, धुत
0: धुत
1: होते
0: थे,
1: हैं।
0: आज भी
1: तो
0: है।
1: ऐसा मैं ये भी कहूँगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35-35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने, लोग सिगरेट पीते थे, मुझे देखते क्या है, तब तक तो मुझे कोई था ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था, और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है, उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: लगा नहीं।
1: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा। फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा, मोहरा, फिजिक, हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं। आज भी हैं।
2: शुक्रिया। है ना?
1: तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
2: देखिए, आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे ज़माने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
1: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
2: हीरो

0: मुझे थिएटर का बहुत शौक था
1: अच्छा
0: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था, शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं,
1: वाह वाह
0: उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था,
1: हाँ
0: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल, जो मॉडलिंग जो
1: हाँ
0: मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊँ, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा, और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था।

0: बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊँ, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा, और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त पे मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था, और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं की वगैरह। तो मैंने लगा कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है।
1: फिर
0: मैंने
1: आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे
0: कैसे
1: मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया। और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं, और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, स्कूल कॉलेज फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज़ करने, क्योंकि ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूँ भी तो उनके साथ काम करूँ, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए।
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस
0: अंग्रेज
1: करती
0: लड़की
1: है
0: नाचती है,
1: वो वाला
0: माय
1: डांस
0: हार्ट इज, हाँ
1: सेक्शन।
0: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी
0: हाँ,
1: पहले
0: इसको।
1: इसको।
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना, और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टीज में से। मैं से नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम पाना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
1: का कहानी है।
0: कहानी है, तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ
0: हाँ
1: कीजिए बीच में रोक रहा हूं, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: हाँ लेकिन
1: स्कूल्स
0: स्टेज,
1: में
0: हाँ
1: और
0: फिल्मों के लिए
1: कॉलेजेस
0: नहीं,
1: में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है,
0: अलग
1: उसके
0: होती है,
1: नुएंसेस अलग होते
0: एकदम
1: हैं,
0: अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं, वो
0: एब्सोल्युटली
1: तो आप जानते नहीं थे। फिर
0: एब्सोल्युटली नहीं।
1: आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप
0: हाँ,
1: दोनों चीजों को जोड़ के
0: साथ में
1: बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो। क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे।

0: तो आशुतोष ने बोला, क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। ही सेज मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है। ऐसे वो हमारी जिम्मेदारी, और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है, आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा, मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है। हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रूट का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली, गाना ए आर रहमान का गाना था वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब इन्हों नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज अ बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाए तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पर रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3rd दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े इतनी बड़ी फिल्म थी
0: हाँ।
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूँगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज़्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूँ वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नज़र में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जग्या है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
0: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई, अने इटले ज आ चार

0: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे।
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
0: बस एवो जो कचरा नो छे भीनो कचरो सूको कचरो सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे। लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
2: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो। चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी माज कचरो आपो।
3: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
2: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
0: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
2: एटले
0: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नू अभियान चाली रह्यु छे अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए। रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
2: आपनू शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।
4: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे।
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
0: बस एवो जो कचरा नो छे भीनो कचरो सूको कचरो सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे। लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
2: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो। चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी माज कचरो आपो।
3: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
2: वाह

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
2: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे।
1: संगीतकार रवि,
3: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
4: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जानी मानी साहित्यकार और समाज सेविका सुधा मूर्ति ने। तो आइए सुने सुधा मूर्ति द्वारा प्रस्तुत ये विशेष जयमाला कार्यक्रम।
1: मैं सुधा मूर्ति बोल रही हूँ मुंबई से। मैं बचपन में जयमाला माने हमारे मुल्क के सैनिकों का एक गीत माला था, ऐसे ही मैं पली हूँ और मुझे बहुत याद है। जयमाला के वक्त में हम बाहर खेलते थे, उस समय मैं आती थी सुनने के लिए, इसीलिए जयमाला ये मेरे बचपन का एक हिस्सा हुआ है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करती हूँ, कभी मैं वर्ड्स नहीं मिलता उस समय मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ। भाइयों ओ मुझे गर्व है आप हमारे देश के बॉर्डर सब प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज यू पीपल प्रोटेक्ट अस, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। आपका हार्ड वर्क इसका नतीजा हम देख रहे हैं, आप कितने हमारे देश के लिए त्याग बलिदान करते हैं और घर से दूर रह के भी हमारा हिफाजत करते हैं, इसीलिए मेरे तरफ से और देशवासियों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए चाहती हूँ। चाइना के बॉर्डर एक बार गई थी, एक बार कश्मीर के बॉर्डर गई थी, एक बार पंजाब के बॉर्डर गई थी, ऐसे हमने 3-4 बॉर्डर देखे हैं एंड मुझे मालूम है लाइफ कितना मुश्किल होता है और आप अकेले होते हैं, लेकिन ऐसा सुंदर गाना आने के बाद आपको मन आनंद और उत्साह होता है वो भी मुझे मालूम है, इसलिए मैं गाने चुन लिया है। ये मेरी पसंद है, शायद आपका पसंद भी होगा ऐसा मुझे लगता है। पहले गाना है, इटालियन सीन होता है वेनिस नगर में, द नेम ऑफ द मूवी इज द ग्रेट गैम्बलर, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान थे। द बोल बहुत सुंदर है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, वो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी शायद पसंद होगा। इसका बैकग्राउंड भी सुंदर है और इसका म्यूजिक भी जरा अलग तरीका से है, इसीलिए मैं पहले गाना आपके लिए दो लफ्जों की ये डेडिकेट करता हूँ।

दूसरा गाना है छूकर मेरे मन को किया तूने इशारा, इसका साहित्य भी अच्छा है, इसका वो संदर्भ भी अच्छा है, मेरा गला अच्छा नहीं, नहीं तो मैं वो ट्यून करके बोलती थी, लेकिन मुझे बोल का अच्छा मालूम होता है लेकिन ट्यून नहीं आती है। ये भी सुंदर गाना है, आप बहुत एंजॉय करेंगे।

राजेश खन्ना हमारे जमाने में बहुत मशहूर एक्टर थे और बहुत सुंदर काम भी वो किया, आनंद हो चाहे अमर प्रेम हो चाहे आराधना हो, और बहुत सारे वो फिल्म अच्छा किए और उनके गाना भी बहुत अच्छे थे। हमने सुना है उनको राग का ज्ञान था, इसीलिए वो अच्छे अच्छे गाने उनके सिनेमा में डालते थे। एक सिनेमा बहुत अच्छा होने के लिए क्या चाहिए, उत्तम कथा चाहिए और अद्भुत संगीत चाहिए एंड ऑफ कोर्स अच्छा डायरेक्टर एक्टिंग ये सब चाहिए। अमर प्रेम में एक गाना है वो राग तोड़ी और खमाज का एक बहुत सुंदर गाना है, वो है रैना बीत जाए, लता मंगेशकर जी ने गाया है। लता मंगेशकर माने क्या, वो संगीता सरस्वती, उनसे सब गाने एक से एक अनमोल थे। और एक गाना मुझे बहुत हार्ट टच किया क्योंकि उधर शर्मिला टैगोर की असहाय कथा, राजेश खन्ना के अश्योरेंस और वो माहौल गंगा के किनारे उनका घर बहुत सुंदर है।

0: मैं एक बार स्टूडियो में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन, धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ,
3: देव दर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ,
3: देव दर्शन धूप।
0: अच्छा वाला गाना चाहिए था, वही अच्छा है। नहीं, 1958 में दिलीप कुमार और वैजयंती माला का एक सिनेमा था, उसका नाम है मधुमती। उस सिनेमा में एक से बढ़कर एक बहुत सुंदर गाने थे, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा। अभी शिलोंग का एक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा आता है, उसमें भी है वो एवरग्रीन सॉन्ग है, दिल तड़प तड़प के कह रहा है, और आजा रे परदेशी है। मुझे अच्छा लगा, बिछुआ बिछुआ बहुत सुंदर है वो गाना, सब गाने सुंदर थे उसमें। और हमने बताया वो अनाउंसर को, नहीं 50 में एक गाना मैं बोलती हूँ, 60 में एक बोलती हूँ, मुगल-ए- आज़म को बोलती हूँ मैं, 70 में एक बोलती हूँ, 80 में, ऐसा मैं गाना चुनती हूँ क्योंकि मैं गाना सुनती हूँ। इसीलिए हर सुबह मैं वॉकिंग जाती हूँ, उस समय मैं FM रेडियो सुनती हूँ, आकाशवाणी से चुनती हूँ। आकाशवाणी का गाना भी बहुत अच्छे होता है, और 7 to 7:30 शास्त्रीय गाना सिनेमा में, उससे हमने राग पहचाना, वो मुझे बहुत मदद किया। संगीत सरिता और विविध भारती का ऑल प्रोग्राम्स, ये बहुत मुझे पसंद है। पर्टिकुलरली व्हेन आई गो फॉर वॉक, मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी से बात करूँ, ये करूँ, फोन पे बात करूँ, नहीं, मैं सिर्फ संगीत सुनती हूँ। मुझे मालूम भी नहीं होता है एक घंटा कैसा चल गया, इसीलिए मुझे सिनेमा का संगीत और शास्त्रीय संगीत का ये सम्मिलन क्या होता है उसको सुनने के लिए मन लगता है। मेरे लिए वो गाना बहुत अच्छा है, बिछुआ बिछुआ, ये आपके लिए मैं पेश करती हूँ।

0: इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान।

0: જનગણનાના પ્રથમ ચરણમાં ઘર યાદી અને મકાનોની ગણતરી એટલે કે તમારા મકાનની ગણતરી થશે. ચાલો તમારી ભાગીદારીથી તેને સફળ બનાવીએ અને વિકસિત ભારત 2047 તરફ એક વધુ ડગલું ભરીએ.
1: શબ્દોમાં મેં ઢાલતે હોય તો બંકિમ બાબુ ને કહા થા સુજલામ સુફલામ મલયજ શીતલામ શસ્ય શ્યામલામ માતરમ વંદે વંદે માતરમ.
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला. जानी मानी साहित्यकार और समाज सेविका सुधा मूर्ति ने, तो आइए सुने इस कार्यक्रम का शेष भाग.
3: मैं सुबह सिंपल राग, मेलोडियस राग और शांत राग ऐसे मुझे पसंद होता है, और उसमें है पहाड़ी एक राग है. सुनने के बाद मुझे लगता है मेरा मन एक पहाड़ में है, उसमें ग्रीनरी है, उसमें पानी है. वो राग पहाड़ी मुझे बहुत पसंद है. वो नूरी सिनेमा में एक सॉन्ग था, वो चोरी चोरी को ये आए. ओके, वो राग पहाड़ी का बहुत सुंदर गाना है, आपके लिए मैं पेश करती हूँ.
4: चोरी

हमारे अम्मा स्कूल टीचर थे और हमने हमारे बता दिया कि आप देश के लिए कुछ करना चाहिए। 1962 में आप सब लोग मालूम भी नहीं कैसा था उस समय, करंट कट करते थे, इसीलिए हमने अम्मा ने बता दिया सब लोग 8 बजे के पहले खाना खा के पढ़ाई करके सोना, देश के लिए करंट बचाना, मुझे याद है। और मेरी ये नानी थी, वो बताई मुझे देश के लिए कुछ करना है, हमें मालूम नहीं था क्या करना है। मुझे वो कि अंगूठी दी थी, हमने बता दिया कि ये अंगूठी मैं देश को दे दूँ, वो बताई हाँ दे देना। मुझे पास एक ही था अंगूठी सोने का, और वो नेशनल फंड में मैंने दे दिया। ये पहला पहला दान है। और बाद में मेरा लड़का रोहन, वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वो अमेरिका में पढ़ता था, उस समय पार्लियामेंट में अटैक हुआ और हमारे मारे गए उधर 13, हमारे पुलिस लोग लगते हैं मुझे, और वो मुझे एक खत लिखा, अम्मा वो दो 13 पीपल डाइड सो दैट यू कैन लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। टेररिस्ट अटैक हुआ था 2001 में, सो यू शुड गिव मनी एटलीस्ट वॉट एवर यू कैन गिव टू ऑल दोज 13 फैमिलीज। उस दिन मुझे गर्व हुआ क्योंकि हम बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, पढ़ाना का उतना मुश्किल नहीं होता है, वो पढ़ के वो क्या संस्कार मन में रखते हैं, वो संस्कार कैसे आप वो इस्तेमाल करते हैं। मेरे लड़का से मैंने वो सीखा और सुना, बहुत गर्व हुआ मुझे, मुझे लगा मैंने अच्छा शिक्षण दिया है उनको। मेरी नानी ने, मेरी माँ ने मुझे उत्तम शिक्षण दिया कि छोटे उम्र में देश के लिए कुछ करना है। और बच्चों को देश प्रेम के बारे में हम बोलना चाहिए क्योंकि देश प्रेम हुआ तो ही देश बचता है। किसी को मिला है अशोक चक्र, कैसे वो बलिदान किए हैं, कितने छोटे उम्र में वो किए हैं, ये सब हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ वो पाठ्य पुस्तक में भी वो हम डालना चाहिए, एक चैप्टर द पीपल हु लुक आफ्टर अवर कंट्री। और बच्चों को बोलना चाहिए एक बार आप आके देखें उनके जीवन कैसा होता है, वो बॉर्डर कैसे देखते हैं, कैसे वो कष्ट लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, और हम उनके ऊपर गर्व होना चाहिए और हमें भी उनका दायित्व भी होना चाहिए, हम उनके लिए काम करना चाहिए। हम लास्ट बट द बेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस सीरीज मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, वो बॉर्डर सिनेमा का संदेशे आते हैं, और ये सच्ची स्टोरी है इसीलिए मुझे हृदय को ये ज़्यादा पसंद है। और भाइयों मेरे चुने हुए गानों का आपके लिए डेडिकेट किया है, आपको अच्छा लगा तो बता देना, कोई गलत हुआ तो माफ़ करना, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। दैट डजंट मीन माई लव फॉर माई कंट्री इज लेस, माई लव फॉर कंट्री इज ऑलवेज देयर, बट लैंग्वेज में बी वीक। धन्यवाद।

था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया जानी मानी साहित्यकार और समाज सेविका सुधा मूर्ति ने। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे हर्ष पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का पहला भाग। वाचिका है ममता सिंह।
1: शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू

0: कर कहा, बहू आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं ही छीन लेते। उसका काम करने वाला कोई तो चाहिए, एक हल तोड़ दूं तो गुजारा ना होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का ये कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा भला दूसरा कौन है? जाने दो, रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वो हुआ और जो इच्छा होगी वही होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है? मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी न सकेगा बहू, तुम किसी बात को सोचो मत। बिरजू गया तो मैं तो अभी बैठा हूं ना।
1: राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगीं। शिवदास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते। भरा पूरा परिवार देख देख प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते। लेकिन देव गति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। अब क्रिया कर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गईं, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा,
0: ये कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजूरी करो और मैं मालकिन बन बैठूं? काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बहलता रहेगा, बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ नहीं होगा।
1: शिवदास ने समझाया, बेटा देव गति से तो किसी का बस नहीं, रोने धोने से हलाकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 20 काम है, कोई साधु संत आ जाए तो पाहुना ही आ पहुंचे, उनकी सेवा सत्कार के लिए किसी को तो घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वो निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, ये देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वो कभी ना आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था, फिर उसे बंद कर ये ताली अपनी कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दराजों से भीतर झांकती थी पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता था। सारे घर के लिए वो कोठरी कोई तिलिस्म का रहस्य था जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थीं। आज राम प्यारी को ये रहस्य खोल कर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडारा खोलते न देख ले, नहीं तो सोचेगा बेजरूरत इसने भला क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ इसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थीं। एक किनारे बड़े बड़े

बर्तन भरे हुए थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगने पर दिए जाते थे। एक आले पर माल गुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई हुई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से यहाँ विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वो उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसिन झुनिया खड़ी है और एक रुपया मांग रही है। राम प्यारे ने रुखाई से कहा, अभी तो एक पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रियाकर्म में सब खर्च हो गया है। झुनिया चकरा गई, चौधरी के घर में इस समय एक रुपया भी नहीं है? ये विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वो सब कुछ क्रियाकर्म में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने ये बहाना किया होता तो उसे अचरज न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर ही शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही की तो बात है, उसने जानकी को शेर भर दूध दे दिया था। यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगने पर दे देती थी। कृपण शिवदास के घर में ऐसी सखरज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गढ़े में पढ़कर आई हूँ। नहीं तुम जानती हो, मेरी तो आदत ही नहीं है मांगने जांचने की। बाकी का एक रुपया देना है, प्यादा द्वार पर खड़ा बकझक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह ये विपत्ति टले। मैं आज के आठवें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन है जहां मैं मांगने जाऊं? प्यारी टस से मस्न हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बिनना अपाढ़ लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर दोनों बहनों में झाँव झाँव होती तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी? तो दो में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कड़ लगाकर रख देती, मानो बैलों का रातिब हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है, अब वो घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकलकर देखा, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़ो दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दें। अब क्या इनसे इतना भी ना होगा? द्वार ऐसा चिकना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए। ये नहीं कि उपकाई आने लगे, अभी कह दूं तो तुनक उठेंगे। अच्छा कि मुन्नी नांद से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नांद में झांका। दुर्गंध आ रही थी, ठीक मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता है कि चार घड़ा पानी नांद में डाल दें। मजूर रखा है, वो भी तीन कौड़ी का, खाने को डेढ़ सेर, काम करते नानी मरती है नानी। आज आते हैं तो पूछती हूँ, नांद में आखिर पानी क्यों नहीं बदला? रहना हो रहे, जाना हो जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लेने चली गई। शिवदास ने पुकारा, अरे बहू, पानी क्या होगा, इसमें तो पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो, कोस भर दूर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठीक काम करने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता, समय पर मिलता, दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है और काम ज्यादा होता है। प्यारी न

0: खुद विश्राम लेती है न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीजें मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी सदस्य दिखाई देते हैं। अब वो पहले किसी दशा नहीं है कि कोई चीथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वो प्यारी है, फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता, मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी ये सब मानते हैं कि प्यारी न हो तो घर का काम न चले। और तो और, दोनों बहनों में भी उतना अपनापन नहीं है। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर में कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी, बोली, तेरे हाथ से काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ कर रखने में मजा आता है ना? प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ के रखती हूँ तो तेरे लिए ही, कि मेरा कोई और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कब का टूट पड़ा है। दुलारी बोली, तुम न खाओ पहनो लेकिन जस तो पाती हो। यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है? तुम्हारा हिसाब किताब मैं नहीं जानती। मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। हाँ, प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपए न हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उद्दंडता से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ कड़े। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाते थे और वो गरीब सबकी धौंस हंस कर सहती थी। स्वामिनी का तो ये धर्म ही है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का भी असर न होता। उसकी स्वामिनी कल्पना इन आघातों में और भी स्वस्थ होती थी। वो गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वो कहती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है बेचारी। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती, इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है बेचारी। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई।
1: ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का पहला भाग। वाचिका थी ममता सिंह, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। हम आपको बता दें, इस कहानी का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सुनो कहानी में। सुनो कहानी।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता।

भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंध

0: लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में

0: महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

फिल्म का नाम था घर, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी। आपके लिए प्रोग्राम में अगली पेशकश।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे तेरे घर के सामने, फिल्म का नाम था, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए,

0: फिल्म था वक्त। आशा भोसले को आप सुन रहे थे। इस गीत में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

लता मंगेशकर को और सखियों को आप सुन रहे थे मधुमती फिल्म के इस गीत में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे हैं कश्मीर की कली इस गीत में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।

मोहब्बत है क्या चीज़, बस कुछ तैरते हुए साए, कुछ ख्वाबों के घरों दे और हवाओं पे लिखे हुए कुछ प्यार भरे पैगाम।

मेरा कोई अक्स नहीं पहचान तुम हो, जिस सांस से मेरी सांस चले वो सांस तुम हो। ये जान लो तुम मेरी जान हो और जहान भी तुम हो।

0: आखिरी का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो भी।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

किसी को देखा, चाहा, प्यार किया, एक से दो हुए, दो से तीन, और फिर खुशियों का मेला। भला कौन नहीं याद करना चाहेगा ऐसे दिलकश सफर को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र

0: निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
2: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to